दिदै म कार्यक्रम संचालक धर्मचन्द्र शर्मा आजलाई ओझेलमा पर्छु। फेरि अर्को सोमबार भेट्नेछौ। हस्त, ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।

टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: नयाँ वर्ष 2083 सालके पावन अवसरमे सबको ग्राहक व्यापारी शुभचिन्तक दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तर प्रगति के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: हमारे यहाँ थारू पहिरन के लहंगा चोलिया धोती सिलाई करना के संगे रेडीमेड भी उपलब्ध करा जाए और कुर्ता सुरुवाल फैशन डिजाइन के कपड़ा सिलेना और सिलाई कटाई के तालीम भी करा जाए। एक तो सेवा करना मौका जरूर देवी।
0: अभी फैशन बुटीक सामुदायिक पुस्तकालय भवन टीकापुर कैलाली संचालक प्रतीक्षा चौधरी फोन नंबर 9868770825।
2: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
3: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी ही जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476717।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगला दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित सन्त निरंकारी आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
4: गुणस्तरीय शिक्षा अनुशासन र नैतिक मूल्यका साथ उज्जवल भविष्य निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता।
5: हाम्रा विशेषताहरू
4: दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा पठन पाठन गराइने
5: शान्त र अनुशासित शैक्षिक वातावरण भएको आधुनिक शिक्षण विधिको व्यवस्था भएको
4: अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड दिने
5: विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण प्रणालीको सुविधा भएको कक्षा सञ्चालन हुने मिति 2083 वैशाख 15 गतेदेखि
4: आफ्नो बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि आजै भर्ना गर्नुहोस्। गुणस्तरीय शिक्षा नै सफलताको आधार
5: सन्त निरंकारी आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली प्रधानाध्यापक भरत कुमार तिरुवा सम्पर्क फोन नम्बर 091-560-059 र 98-485-1767।
6: ओए साथी हेर न क्या खतरा समाचार आइसक्यो बाप रे अब चाहिँ के हुने हो
7: खै खै के आयो त्यस्तो यतिकै

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी की राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते हलवाती खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। आज से सांसद के बजट अधिवेशन शुरू हुई थी। सरकार से आज निजी तथा कार्यक्रम लन्ना। आज से देशभर सरसफाई सप्ताह शुरू हुई। शीत भंडार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति के प्रथम साधन सभा। शीत भंडार के बाकी काम निर्माण शुरू। लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण के लिए टीकापुर में तालीम शुरू। टीकापुर में खुला महिला फुटबल प्रतियोगिता चलती। ओलीग दुई के शीर्ष टोली संगे महत्वपूर्ण दुई श्रृंखला में नेपाल। रानी जमरा कुलरिया सीट भंडार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति के प्रथम साधन सभा हुई बा। सभा से सीट भंडार संचालन समिति के लौवा नेतृत्व चयन करल बा। रानी जमरा कुलरिया सीट भंडार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति के नेतृत्व केला गणपूरक संख्या नई पुगल पाछे जे 10 गते और भेला बोलाइन निर्णय करल बा। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था मूल समिति टीकापुर के अध्यक्ष कुमार राज शाही के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई प्रमुख भरत कलेल से शीत भंडार निर्माण के आवासन के अवस्था के बारे में जानकारी कराई बाटे। आयोजना के सहयोग में शीत भंडार निर्माण अंतिम चरण में पुगल बा। शीत भंडार निर्माण गैल वर्ष 85% में निर्माण संपन्न हुई। बाकी काम समेत शुरू हिलवा। शीत भंडार निर्माण के बाकी काम पूरा करकलाक निर्माण व्यवसायी है। 2083 के मंगसिर सम के म्याद ढेल बता गिलवा। उसका बरसात में शीत भंडार संचालन करना योजना तैयारी करलवा। बाकी रहल निर्माण काम व विद्युत तथा रेफ्रिजरेटर के समेत समय काम हुई रहलवा। कल से दुई कार्यकाल के छुट्टा छुट्टे समेत दुई ठो काम के छुट्टा छुट्टे ठेका करके 1,34,66,915 रूपया में निर्माण काम शुरू हिलक बताइल बा। अब आयोजना के 75% उपभोक्ता के 25% लगानी बा। ये आगे आयोजना के 80% समेत उपभोक्ता हुकरन के 20% लगानी में रहल बा। कल से 7,06,69,000 शीत भंडार निर्माण के काम हुई थी बा। 1000 मेट्रिक टन क्षमता के शीत भंडार में विशेष करके आलू भंडारण में प्रयोग समेत करना योजना बा। आयोजना के शीत भंडार संचालन के लिए कार्यविधि निर्माण पुक्ति बा। व्यावसायिक योजना बन सकल बा। कल से भवन निर्माण पाछे जल उपभोक्ता मूल समिति ही हस्तांतरण करना हो। कुछ समय संचालन के लाख सहयोग पुग्ना आयोजना के प्रमुख कड़ेल बटोले बाटे। शीत भंडार संचालन के लाख उपभोक्ता हुआ ई आगे 1,31,00,000 लागत सहभागिता जनाइल बाटे। ई पटक 33,00,000 लगानी कर पर्ने बा। यमना ई वर्ष जल उपभोक्ता समिति से 7,00,000 लगानी करल बा। कल से बाकी रकम उठना क्रम में रहल जनाइल बा। उपभोक्ता हुकरन के शीत भंडार निर्माण के लाख तिरपन्न रकम 2081 साल में टीकापुर नगरपालिका से 74,00,000 सहयोग करल रह। कल से चालू आर्थिक वर्ष में जानकी गांवपालिका से 15,00,000 रूपया छुट्टियाल रह। उपभोक्ता समिति में 4,596 शेयर सदस्य बाटे। जमुना 71,683 शेयर किता रहल बा। कल से शेयर रकम 71,68,300 पुगल बा। अब साधन सभा के लाग 678 जने पार्षद रहल बाटे। कार्यक्रम में बोल्टी जानकी गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी आयोजना शुरू कर बेर सिंचाई सुविधा पुगैना और कृषि उत्पादन बढ़ैना उद्देश्य से काम करल से फेन धीरे से शीत भंडार विद्युत उत्पादन जैसन काम करके सुविधा विस्तार करती रहल बटोले बाटे। वहां पुरखा के समेत कुल आधुनिकीकरण हुई। बिजुली उत्पादन करके वार्षिक 15 करोड़ के समेत विद्युत बिक्री हुईलक।
हाइड्रो पावर के किसान उक्राफे शेर पाई पर्णवर रिटायलबाट अध्यक्ष चौधरी हरेक आयोजना मन लक्षित वर्ग हे फायदा हुई पर्ना बाटमा ध्यान दे पर्ना बताई शीत भण्डार संचालन के लगफे यहाँ के किसान उकरण के आर्थिक स्तर सुधार कर पर्नामा जोर दे बाटे। टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष खड़क धामी सिंचाई आयोजना किसान उकरण के क्षमता विवृद्धि उत्पादन वृद्धि संगे उत्पादन भण्डारण में समेत सहयोग करलकमा खुशी लागल बटोले बाटे। पहिले रानी जमरा के कमान क्षेत्र टीकापुर जानकी भजनी नगरपालिका के रह कलसे अब तेसरा चरण में पुके क्षेत्र विस्तार हुके लम्की चुहा जोशीपुर बर्दगोरिया घोड़ाघोड़ी नगरपालिका फे थप गिल्वा यहां के किसान हुकरा शेर सदस्य बन पैना व्यवस्था बा। कार्यक्रम में जल उपभोक्ता संस्था के सचिव परशुराम महतो से संचालन कर रहे कलश स्वागत उपाध्यक्ष कीर्त बहादुर रोकाया कर रहे। संघीय सांसद के बजट अधिवेशन आज से प्रारंभ हुई थी बा। आज सरकार से नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करना कहल बा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संघीय सांसद के दोनों सदन में संयुक्त बैठक में संबोधन करना कार्यक्रम रहल। सांसद सचिवालय के प्रवक्ता एक राम गिरी जानकारी देले बाटे। नेपाल के संविधान के धारा 95 अनुसार राष्ट्रपति से आह्वान में 4 बजे सरकार के समेत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत होना जानकारी दे गिलवा। उदाहरणमा समेत प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन हुई पासे पहिल अधिवेशन हो। प्रत्येक वर्ष पहले अधिवेशन प्रारंभ हुई पासे राष्ट्रपति दोनों सदन के बैठक सम्मा संबोधन

फोहोर व्यवस्थापन के स्पष्ट मापदण्ड नै भुलेको छ। सेवा प्रवाहमा कर्मचारी सेवाग्राहीकरण के स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दै रहलक। सन्देशमा यी मार्गदर्शन तयार पार्गिले हो। मार्गदर्शन अनुसार सरकारी सूचना बोर्ड नागरिक बड़ा पत्राओ संकेत चिन्हमा स्पष्ट तथा व्यवस्थित फुलबा सर्कल व समेत उक्तल भित्ता के समेत मरमत रंग्रहण करना मुख्य सेवा क्षेत्र और प्रवेश द्वार है आकर्षक तथा सफा बनैना कहलबा। सामुदायिक स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट टीकापुर के चौथो चुनावी साधन सभा शुरू हुआ। साधन सभा के उद्घाटन करते टीकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारी फे कौनु फे संघ संस्था है बलगर बनैनकलाक एक व्यवस्थापन बलगर हुई पर्ना बटोटी व्यवस्थापन में ध्यान देना सुझाव दिलवाट। उपाध्यक्ष रंग प्रसाद अधिकारी से स्वागत कर कार्यक्रम संस्था के संस्थापक अध्यक्ष गणेश प्रसाद ओझा वीरेन्द्र बहुमुखी कैंपस के सहायक प्रमुख द्वारिका भण्डारी लगायत से शुभकामना मंतव्य धरले रहें। संस्था के अध्यक्ष बीर्ख बहादुर शाह के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम संचालन सचिव जनक खड़का करले रहें। पहिल सीएमए कार्यक्रम संचालन करती रहल सामुदायिक स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट में ई कार्यक्रम बंद हुई पाछे सामान्य चिकित्सा ऐसे कार्यक्रम संचालन करती रहल बा भेट जेटीए में भर विद्यार्थी भर्ना नहीं हुए कोर्से अब ई कार्यक्रम बंद कर गिल बा। तेसरो वर्ष चलती रहल कि सामान्य चिकित्सक एचए कार्यक्रम केलक अब 119 जाने विद्यार्थी पढ़ती रहल बात चुनावी साधन सभा से आगामी 3 वर्ष केलक लाओ नेतृत्व चयन करने बा। टीकापुर यूथ क्लब के आयोजना में टीकापुर में खुला महिला फुटबल प्रतियोगिता शुरू करल बा। प्रतियोगिता में कर्णाली प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश सहित के सुदूरपश्चिम के 9 टीम सहभागिताबाट खेलकूद में जे 3 गते समय चलना कहलबा। क्लब के अध्यक्ष अभिषेक शाह के अध्यक्षता में हुई प्रतियोगिता उद्घाटन करती प्रमुख अतिथि टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी से फुटबल प्रतियोगिता टीकापुर के पहचान और विकास में थप सहयोग पुग्ना कलक वर्षे आयोजक प्रति धन्यवाद देती वहां आगामी दिन में ऐसी कार्यक्रम के लग सिक्न जत्रा सहयोग कर प्रतिबद्धता जनाइल बाट राष्ट्रीय फुटबल खिलाड़ी तथा एम्पायर सिद्धार्थ कुल्ला से देश के मजा खिलाड़ी उत्पादन करना टीकापुर में ई फील्ड में लम्बा समय पाछे पुनः खेलकूद शुरू हुई कोर से खुशी लागल बतौल बाट कार्यक्रम में प्रकाश खड़का लगायत से बोल रहे। कालीखुल पहल खेल में भजनी से लम्की है एक गोल से पराजित करल बा। कलश प्रतियोगिता में प्रथम हुई टीम 2,00,000 पुरस्कार पैनल कहलबा। खोजखर माया गरी फैंसे विश्राम विश्राम पाछे फिर से भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीका प्रेफ एम।

0: वर्षिनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक, मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा, असमानता, बिग्रदो स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान।
1: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमे जाइस् त?
3: मै नै जाइम। उहाँ अपन अनुहार बिगर्थे, घर से बाहर नै निकर्थु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई टवाई तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9846777417।
6: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। टीकापुर में लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण के लाख तालीम शुरू हुई बा। टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के आर्थिक सहयोग में डिगु विकास महिला संजाल से तालिम संचालन कल के हो। तालिम टीकापुर नगर पालिका भीतर के साथी जाने महिला अगुवा हुकरा सहभागिता जनाइल बाटे। कार्यक्रम के उद्घाटन करती वार्ड अध्यक्ष मोहन विकास से नागरिक हुकरन के तिरल कर से विनियोजन बजट से तालिम संचालन कर लग जानकारी कराईती कर के सदुपयोग हुई पर्ना बटोले बाटे। वार्ड अध्यक्ष विकास से हजारों संख्या में रहल वाड़ावासी महिला सबको जाने तालिम देहे नई सेकलक और से प्रतिनिधि मूलक के रूप में केल हरेक वर्ष कुछ न कुछ महिला उकरण तालिम देना करल बतौती आयल बाटे। कार्यक्रम में इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर के प्रहरी निरीक्षक मुकेश नेवानी हिंसा आजी समेत अपन घर से समेत अंत्य करे पर्ना जोर देने बाटे। संजाल के पूर्वाध्यक्ष चंद्रावती शर्मा, उषा चौधरी तालिम के सहभागी ओ समेत महिला समूह हुकरन के लाख उपलब्धि मूलक हुईना अपेक्षा करने बाटे। संजाल के अध्यक्ष कौशिला खनाल भंडारी के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम संचालन सुला खत्री करल हई, कल से स्वागत पार्वती शाह करल हई। तालीम 4 दिन सम चलती बा। काठमाडौँ में अवतरण के क्रम में टर्किस एयरलाइन्स के विमान में आगी लागल बा। आगी दमकल के प्रयोग करके नियंत्रण में लेलके हो। विमान में रहल सबको यात्री हुकरा सुरक्षित रहल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूल जानकारी दिए बाटे। वहां के अनुसार यात्री हुकरन इमरजेन्सी द्वार से उद्धार कर गिल रह। उ विमान में 4 बच्चा सहित 277 यात्रु रह। विमान में आगी लागल पाछे उद्धार के क्रम में कुछ यात्री हुकरन सामान्य चोट लागल बा। विमानमा कुछ सब ओ समेत सामान फे पलबा। उसका काठमाडौँ वायल TK-726 विमानमा आज बिहान के 7:15 बजे अवतरण के क्रम में चक्का में आगी लागल बतागिल बा। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार हाल नेपाल के पश्चिम वायु, स्थानीय वायु और नेपाल के पूर्वी भूभाग लगह तल्लो वायुमंडल में रहल न्यू चापीय क्षेत्र के साथ मध्य पूर्व भूभाग में समेत वायुमण्डलमा रहल न्यून चापीय रेखाके समेत आंशिक प्रभाव रहल बा। कोशी प्रदेश लगायतके बागमती गण्डकी प्रदेशके पहाड़ी तथा हिमाली भूभागमा साधारणतया मौसम बदलल बा। कलसे देशके बाँकी भूभागमा आंशिक मौसम बदलती रहल बा। कोशी औ बागमती प्रदेशके हिमाली तथा पहाड़ी भूभागमा तथा लुम्बिनी प्रदेशके हिमाली भूभागमा एक दुई स्थानमा मेघगर्जन औ चट्याङ सहित वर्षाके सम्भावना रहल बा। ओ नेपाली क्रिकेट टोलीके गैल साता घरेलू मैदानमा लीग टूके एक ठो श्रृंखला खेलल। ओमान ओ युआईके श्रृंखलामा चार मध्ये तीन खेलमा नेपाल जीत हात पारल बा। कलसे नेपाल घरेलू मैदानमा फेरसे औरे श्रृंखला खेल्ती रहल बा। यी पालीभर नेपाल तुलनात्मक रूपमा बल्गा टोलीसँगै खेल्ती बा। लीग दुईके अंक तालिकामा शीर्ष दुईमा रहल दुई टोली अमेरिका औ स्कटल्याण्डसँगै नेपाल महत्वपूर्ण श्रृंखला खेल्ती रहल बा। यी बीचमा नेपाल ए टोली सेभर अमेरिका औ स्कटल्याण्डसँगै अभ्यास एक दिवसीय खेल खेलल बा। ए टोली से दुनु टोली हे हरासे करल बा। कलसे ओसँगै नेपाल ए टोली से खेलल ईशान पाण्डे सिनियर टोलीमा फर फे समेत पर्सेकल बाटै। यही समाचार संगे खोज खबर वायल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। आज से संसद में बजट अधिवेशन शुरू हुई थी। सरकार आज ही नीति तथा कार्यक्रम लन्ना। आज से देशभर सरसफाई सप्ताह शुरू हुई। शीत भंडार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन में समिति के प्रथम साधन सभा। शीत भंडार के बाकी काम निर्माण शुरू। लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण के लिए टीकापुरमा तालिम शुरू। टीकापुरमा खुला महिला फुटबल प्रतियोगिता चलती हो। लीग दुई के शीर्ष टोली संगे महत्वपूर्ण श्रृंखला खेलती नेपाल। लिटा बकलत थारू भाषक खोज खबर अत्रै। और समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते रहे राम राम।
7: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
8: जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
7: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू। छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रायसिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खट्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
9: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
8: आउने दिन जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
7: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
10: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना उनी ना पट्टा नि पैना त
11: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ
10: तुहार बाटो अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मा से गहना बनाएको आन्छे के कतरा सुघर बनाएको अनला बाटी
11: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आऊ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स मा गर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
10: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846939261।
12: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौ।
13: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
3: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
13: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
14: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
15: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन् त बाउ, के पाउँछ त्यहाँ?
16: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
17: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
18: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
15: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
19: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला टेरस।
20: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला टेरस।
21: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
22: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 9844846673 र 9814680204।
23: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको आइतबार र बुधबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।
24: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना। 2083 असार 1 गते से टिकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रलको से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुकरण यह सूचना से जानकारी कराई थी। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र, टिकापुर, कैलाली।
25: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।

0: से कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर होस्ट बाटिन गटिलो ठाउ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, एक आनल झोला दस का टस बाटिन। ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में। रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनिया हुकन में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आज महीन ठिकरी वो घोंगी बड़ा खैनास लगता कहाँ जीना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खैनास मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत चलो जाए मई फैन संगे जिम
1: चलो टा चलो
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बो सेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनकल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9806410186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली। लावा बरस 2083 साल के पावन अवसर में सबको दादू भैया दीदी बहनिया समाज सेवी बुद्धिजीवी स्वदेश तथा विदेश में रहल सबको उनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
2: अध्यक्ष लौटन चौधरी सचिव पंकज चौधरी कोषाध्यक्ष शर्मिला कुस्मी थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्रीय कार्य समिति टीकापुर कैलाली।
1: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा टीकापुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभाव कार्य समिति बचतकर्ता कर्मचारी इष्टमित्र शुभचिन्तक लगायतका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: अध्यक्ष भरत रावल उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर रावल सचिव पुष्पराज केसी व्यवस्थापक दीपक बहादुर थापा र टीकापुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा ग्राहक कार्य समिति कर्मचारी इष्टमित्र शुभचिन्तक लगायतका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: अध्यक्ष खड्क बहादुर धामी टीकापुर साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था परिवार टीकापुर कैलाली। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारी समाजसेवी बुद्धिजीवी सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष सन्तोष खड्का महासचिव प्रकाश तिमिल सेना कोषाध्यक्ष टीका शाही टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ टीकापुर एक कैलाली।
3: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।

0: का पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा के होस्ट पार्टी गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर भर रही थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाका आई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरास बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबो रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

सात रंग के फूला फूले लागल ऊ तोहार फुलरिया में औका छैली फूला लो रे ऊ तोहार फुलरिया में बिल्कुल सजिया बन के तोहार फुलरिया में बिल्कुल रमाइलो कार्यक्रम में जोड़ ली गीत अपने हुकन के लग मनोज महतो अवस्था के चाहिए अपने हुकन के लग जोड़ी समीक्षा चौधरी की आवाज में वीर चौधरी के शब्द रचना में रहे गीत अपने हुकन के लग ओके कार्यक्रम में चाहिए सहभागी जनाइ 91-561-255 अर्थात 0915612555 लाइन एकदमै खुल्ला भा कार्यक्रममा यी विकल्प सक्ने कर हाम्रो रमाइलो गफ हुई कनमै चाहतो औ सँगारे भने विशेष गरी करिब करिब 1:45 बजेसम्म यात्रा गर्न हो अपने कर हाम्रो रमाइलो बातचित हुई कनमै जानकारी गर्न चाहतो तो डायल गर्दै गर्बी 0915612555 अर्थात 0915612555 कोही कोही लाइनमा आइलबाट हजुर राम राम

लगभग बरखा के समय आ गए, बिहार छिटना बेला आ गए, किसान दादो भैया के बिजी रहना बेला आ गए, फेरी ना सबको जाने कौन धान छिटी बिहार बिया कौन धान के छिटी कहना सोच बनाई थी भी लागत में बिहार रहा तो अपने जोत जात के तैयार बना सकल भी। अब लगभग इ महीना के अंतिम अंतिम में जमा जब छिटना शुरुआत और इ महीना के अंतिम में छिट बिकल से ज्येष्ठ के शुरुआत में जब वो फिर छिट सक भी लागत में तो एकदम तैयार हुई भी अलमल में हुई भी बिल्कुल कौन बिया छिटू कौन बिया धान छिटू कौन मजा हुई के सोच हुई गल से एकदम अपने इनके ठाव ठाव में प्राविधिक हूँ बात में कृषि प्राविधिक वहां उनके संगे परामर्श लेके सलाह लेके एकदम अनुभव मन अनुभवी मन इनसे वहां पर सलाह लेके अपने वो काम कर भी कर से जरूर थे अपने के लग मजा रही कना मैं आपको जानकारी करना चाहूँ टोटल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनाते कर भी कना जानकारी करती कार्यक्रम में ठेक ठोक गीत जोड़ी गीत के पास मैंने बाटू डायल करते कर भी 091-561-255 लाइन खोलेगा।

0: ਕੁਨੀਆਂ ਬੂਝਾ ਕੁਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਡਗਰ ਆਏ ਸਾਈ ਸਾਈ
1: हजुर बिल्कुल रमाइलो सजना गीत जोड़ली बर्मा से सजना गीत हेरी ना चैत से लैके वैशाख जेठ से लैके वैशाख समे जो हमार समाज में समुदाय में जो क्रियाकलाप हुई सबको क्रियाकलाप के चित्रण करल बाबो में जस्ते चैत महीना में लागिने मतलब जेठ महीना असार महीना सावन महीना में का क्रियाकलाप हुई माघ फागुन में का हुई सब कुछ चीज चित्रण कर लगा जस्ते जस्ते असार में छत्री भंगैना से लेके उस मछिया जो हमारे बिहार काटिकल मछिया बनैना रह भंगैना रह मछिया भंगैना से लेके बिल्कुल दसिया देवारी कसिक मनैना उसे के माघ लावा वर्षा कसिक मनैना बिल्कुल सब कुछ चीज के चित्रण करल सब कुछ चीज है धुरेरी कसी के फगुआ कसी के मनैना रब्बी कैसी कटना यानी कि सब कुछ चीज ये गीत में चाहिए एकदम मतलब ये गीत में चाहिए एकदम इतिहास बोकल गीत हो ई मैं एकदम गायक कलाकार हूं एकदम धन्यवाद दें देशराज सतगम सुमति थारू दोए गैले रही गीत एक तो सजना गीत हो हमारे अब के बेला में चाहिए एकदम ऐसे ऐसे गीत सुनबो तो हमार मर्म हमार संस्कार हमार संस्कृति हमार मन एकदम बदलत का कहे कि हमार संस्कृति हो संस्कृति के गीत हम सुनते कि कुछ हमार मन में फरक चीज जागत का कि हमार संस्कृति बचाए पड़ना हमारे इके जगा पड़ना हो हम ऐसे ऐसे संस्कृति है बचाई भी कल से हम एकदम मजा रहत ये चीज है हमारे सबको जाने संरक्षण और संवर्धन करे पर एकदम जरूरी रह कि हमारे बुझे पर एकदम जरूरी हो तमारे हमार कला हमार संस्कृति है हमारे सबको जाने जगाए पर्ना और बचाए पर एकदम जरूरी बा तो कार्यक्रम में सहभागी जाने टिकट भी सुनने 91-561-255 आज हमारे जनौनी कहकूट दिमाग खेना प्रश्न थारून के लिखित दस्तावेज में स्वान पुरखौली के स्थित संपत्ति झलका में एक प्रश्न हमारे लेके आयल बारी तो अपने चाहिए ऊ प्रश्न के सही जवाब देख ला कार्यक्रम में सहभागी जनाइबी 091-551-255 अर्थात 091-561-255 लाइन एकदम खुला बा कार्यक्रम में सहभागी जनाइबी के मैं अवलोकन कहना चाहूं तो डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनाते कर भी फैंसे ठाव गीत जोड़ा पठे बार गीत के बाद समय बाटो डायल करते कर भी 091-551-255 लाइन खुल्ला।

0: हजुर विपुल रमाइलो गीत अपना कन के संगे जोड़ने कार्यक्रम में बाटो मानी अमिके साथ देते सीपी जी और हमारे अपने कन के संगे बटी अब ठीक के व्यापारिक विषय हमने नंदेला होगी बैक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और जाए ब्रेक के पास मैंने बाटू रेडियो स्वर्ग को होने जाए तब संग एक व्यापारिक विषय डायल करते कर भी शून्य 91 5 61 255 लाइन खुले बा
1: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य सेवाग्राही संचालक समिति सल्लाहकार समिति कर्मचारी वर्ग शुभचिन्तक शुभेच्छुक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: अध्यक्ष भगवती दास चौधरी व्यवस्थापक कमलेश्वरी बोहरा नवनिर्माण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार टिकापुर कैलाली।
3: रजनी वहाँ बासठ नंबर लक्ष्य बात देखा होगा अच्छा लिखा होगा
4: मुर्गी दाना देना जा रहा मैं सात लक्ष्य खा देती है अपना
3: एक तो तपा का मुर्गी में खा रखे लक्ष्य से जुड़े से बक्सा की आनो हाली छत्ता
4: सापन घिसके आई चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस से आकर बेन घर भीतर आई लागी कलर से भगे भी
3: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआदी व खादी कहीं का भगाई खुद लखो का
4: आरो में कीड़ा फटिंदा मुझ सांप सिर नीचे आकर कहीं का फलाम को जारी लगा पाते तपा मुर्गी खेती बुगाई नहीं देखी बिना अपना दाखी दूर रिना
3: हो बिना था क्या करना हो तपा देखती की दर नागर लगना रही था देव तपा तो अपना घूम का बारी वो कर गिर था
4: हमारे केल सापन से डरे ना नहीं होनी मुखर थे हमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई लगी पति रक्षा करत लाग व आपन बचाव करत लाग साम दसना कर था
5: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई व नी जीस के साप मन देख डरे था निचलाख दूर रहनशील साप नि दस्ट तर मुक्र खैना खुवाज बाहिर निस्कन अब घाँस काटा बेर ख्याल बेर ड्याङ्गा बेर छुपेको छ मनैमही मारकबाट कना समस्क पट्टी रक्षा कना क्रममा साप दस लाख अर्थ मनै सापन व्यक्ति कि मारक लाग रहेछ ओसीको कर बेर फेर साप दस लाख अर्थ
6: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लङ्घक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेभिथा
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा के होस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223733

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन का घर हेरो ना, अट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा कर टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो होना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
3: हजुर व्यापारिक विषय हामीले पाछे पेन्से स्वागत भयो कार्यक्रममा। कार्यक्रममा बाटो नामी सन्मीको साथ दिँदै सङ्गारी सिपीजी अब यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz भर्खर रेडियो खोल अलिकति तरसी हो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz कार्यक्रम हो निशाना निशाना में बाटो नामी सन अब ठिकै ढ्याउने बटुवा के लम्बा व्यापारिक विषय हामीले पाछे फेन्से एक ठोक गीत जोड्न चाहम त एक ठोक गीत जोडी गीतके पास मेन डायल कर्तकर्पी 91 5 61 255 निशाना लगाएक्लक आइटकर्पी

नील गगनमै घुल्जा बहती भवन में बिल्कुल रमाइलो गीत सुनती सुनती लगभग लगभग कार्यक्रम के निर्धारित समय डगर काटे लागल संगे विदा मंगना बेला हो गल बा उमारे हरेक अथवार के सोमवार मंगलवार बुधवार और बिहीबार हमारे साता में चार दिन अपने उपन के संगे संगे हमारे आई थी और चार दिन फरक फरक तरीका से अपने उपन संगे थी। सोमवार के दिन हमारे निशाना लगे थी, मंगलवार के दिन कार्यक्रम अंताक्षरी अपने के लग वस्ते के बुधवार के दिन विशेष करके अपने उपन के रोजल खोजल सोजल गीत सुनाई थी। वस्ते के बिहीबार के दिन कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा अपने ठंड वो सुनाई लगे थे। टोटलिज्म रेडियो सुन के साथ अपने सबको जन धन्यवाद दें, टेक में बैठ के साथ दे हुआ संगा रिस्पी जी हेदे तो धन्यवाद देम अपना टंटलापुर घाम बाद दोपहर के समय व संगारे को ई बेला में चाहिए बिल्कुल अपन ख्याल करके काम कर भी स्वास्थ्य के लग पानी पानी हो तब हमारे पानी एकदम पीबी का नाम चाह और किसान दाजू भाई हुकन बियार लगेना मतलब छिटना बेला हो गल बा बिया ढाने के छिटना बेला हो गल बा तो ई बेला में चाहिए एकदम अनुभवी और दक्ष प्राविधिक हुकन संगे सर सलाह लाई कि आपने के मतलब खेती कर भी यानी कि बिया छिट भी करे से एकदम मजा रही का नाम अपन कहती जानकारी करती। अंतिम एक रमाइलो गीत छोड़ती संघारी सीपी चौधरी जी है देव धन्यवाद देती मैं मिशना का जहां राम राम जय देव जय गुरु बाबा सुबह दिन आपके पास सुबह रहे रेडियो टीकापुर FM सुनते कर भी

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सक्कू भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करत लाख सक्कू जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी संदेश।
2: आरएमई स्कूल टीकापुर में विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
1: नया वर्ष 2083 साल को पालन अवसर में संपूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थी में सुख शांति समृद्धि र दीर्घायु को हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित आरएमई स्कूल टीकापुर में नया शैक्षिक सत्र 2083 साल का लागि प्ले ग्रुप देखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुले सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
2: आरएमई स्कूल टीकापुर कैलाली, संपर्क नंबर 091-561-250 र 091-560-712।
3: ए बा आई गई क्या? आज तो पहिला नौकरी को पहिला महीना तनखा खाईकन आए कि ओली मेरी चेली।
4: तनखा खाईकन होइन बुवा, तनखाले भोलि का दिन कि ढुक्क पारेकन आएकी छु।
3: हाँ?
4: हो भन्या बुवा, पहिला महीना को तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफ में तो कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाई का लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमा का रिटायरमेंट का समय का लागि घातक रोग सुविधा सहित को पेंशन योजना, वाची मेरा भविष्य का लागि सेविंग ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
3: ठीक गरिबा, आफै बाटो सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
4: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, हैन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बीमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मि सम्पर्क हरे।
5: विद्युत महसुल भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गतेबाट टीकापुर वितरण केन्द्र र लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित विद्युत महसुल काउन्टर बन्द गरिने लक्ष्य राखिएकोले विद्युत महसुल अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्न हुन सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। विद्युत महसुल अनलाइन भुक्तानी गर्ने समय बिहान 8 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर कैलाली।

0: गली भाई एक घड़ी विस्तारित तो कर दे
1: ना बाबू पानी।
0: आप से टूर ना दे ना
2: बरबर वाला
3: असो बरा बढ़िया भी यार बावे ना
4: वाह बड़े जूर बावे ले वो हर भाई फुगा दे
1: ले भैया ही फुगा दे
0: अक्के घरिक बयाल अक्के घरिक पानी बरखा से होए।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजिक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने हुकुन स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम अपने हुकरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारा पात्र ओ नेपाली पात्र मफी सुन्टी हलवाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से काठमाडौँ मस्जिद धनगढ़ी तर्फ आईटी कलक यात्रुभाग बस बर्दिया में दुर्घटना 10 जना घाइते जानकी गांवपालिका में 5 दिने सामुदायिक होमस्टे व्यवस्थापन तालीम शुरू तानिमकी सदुपयोग करना अध्यक्ष गणेश चौधरी की आग्रह राष्ट्रपति मचे सरकार की नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत ओएसी के नतीजा सार्वजनिक हुईना बोलेला बोर्ड बैठक पूरा खबर काठमाडौँ मस्जिद धनगढ़ी तर्फ आईटी कर्लक 9849 नंबर के यात्रुवाहक बस बर्दिया नगरपालिका वड़ा नंबर 2 अमरिनी में दुर्घटना परलवा जिला प्रहरी कार्यालय बर्दिया के सूचना अधिकारी के अनुसार बस में सवार 21 जना यात्रु संपर्क माइल दुर्घटना में पर्के 10 जना घाइटे हुई घाइटे मध्य 3 जना के कोहलपुर में उपचार मिट्टी रलासेफी 1 जना हथाव उपचार के लाख लम्की लगलाबाट और घाइते हुकुन के लाख सामान्य चोटपटक लगलग अस्पताल भर्ना करना पलक प्रहरी जनेलबा घटना बारे प्रहरी थप अनुसंधान कटिहलबाट जानकी गांवपालिका के आयोजना में 5 दिने सामुदायिक होमस्टे व्यवस्थापन तालीम शुरू हुईवा जानकी गांवपालिका के वड़ा नंबर 6 में शुरू हुईलक तालीम में जानकी गांवपालिका के 3 स्थान में संचालन हुईटी रहल होमस्टे में आबद्ध नागरिक हुक्र सहभागिता रहलबाट तालीम के उद्घाटन करती जानकी गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी तालीम की सही सदुपयोग करना आग्रह कलबाट अध्यक्ष चौधरी हमारा पैसा कमेना नई जल्लक अवस्था में पैसा कमेना डगर पहचान केलाक यह तालीम के आयोजना करला को उमह सक्रिय सहभागिता जन्य आग्रह कलबाट गांवपालिका के उपाध्यक्ष लालमती देवी कठरिया तालीम में सिखलक बाद व्यवहार में उतरना में अपन विश्वस्त हुईलक बुटिलोवाटी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट गांवपालिका भीतर अलग होमस्टे के संचालक हुकन के क्षमता अभिवृद्धि केलाक तालीम के आयोजना कलक बुटिलोवाट तालीम के प्रशिक्षक होमस्टे घरवास महासंघ के महासचिव कृष्णलाल चौधरी होमस्टे सकुधान संचालन कर सेकनाओ मनेन की जीवन संघ जोलक पेशा हुईलक इहे मसे आर्थिक समृद्धि लाना सेकना अपेक्षा कलक बुटिलोवाट स्थानीय जगतपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष निरबहादुर शाह जगतपुर में स्थापना हुलक होमस्टे संचालन के लाख सामुदायिक वन सहयोग कति रहल व आगामी दिन में फिर सहयोग जारी रहलक बुटिलोवाट वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्र प्रसाद जैसी संचालन कला कार्यक्रम में कार्यपालिका के सदस्य पार्वती चौधरी स्वागत कर रही तालीम में जानकी गांवपालिका के अमौरी जगतपुर बकलौहा में संचालित होमस्टे में आबद्ध 35 जना के सहभागिता रहलबा खोज खबर में घेरी विश्राम मिशन पास फिर से विश्वत्री सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर नगर को प्रथम शैक्षिक धरोहर वीरेन्द्र विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2083 का लगी तपसिल को कार्यक्रम बमोजिम कक्षा पीजी देखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुले सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
2: भर्ना कार्यक्रम
1: नया विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम शुभारम्भ 2083 वैशाख 2 गते बाट नया शैक्षिक सत्र को पढ़ाई शुरू 2083 वैशाख 7 गते बाट
2: वीरेन्द्र विद्या मंदिर का विशेषता
1: विद्यालय हाता भित्र स्वस्थ हरित वातावरण भएको
2: दक्ष र अनुभवी शिक्षक बाट अध्यापन गराइने
1: एकै परिवार का 3 जना में 1 जनालाई निशुल्क छात्रवृत्ति दिइने
2: विद्यालय में घेरा पर्खाल का व्यवस्था का कारण बाल बालिका को सुरक्षा को निश्चितता भएको
1: सीसीटीभी क्यामेरा द्वारा शैक्षिक गतिविधि को अनुगमन गरिने
2: नेपाल सरकार को नीति अनुसार जेहेन्दार दलित जनजाति महिला अपाङ्ग अनाथलाई निशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरिने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई हुने पर्याप्त खेल सामग्री र खेल मैदान को सुविधा भएको
1: ई पुस्तकालय तथा पुस्तकालय को सुविधा रहेको
2: हालसालै जडान भएको शुद्ध स्मार्ट खाने पानी को सुविधा रहेको
1: विद्यालय को खेल मैदान उद्यानमा नवनिर्मित अत्याधुनिक कवर हल भित्र विविध अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने,
2: स्काउट प्रशिक्षणको व्यवस्था भएको,
1: कम्प्युटर ल्याब र विज्ञान प्रयोगशालाको पर्याप्त सुविधा भएको,
2: बाल मैत्री शैक्षिक वातावरण भएको,
1: विद्यालय हाताभित्र स्वास्थ्य तमेना गृह सुविधा रहेको
2: र प्राथमिक उपचार र विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको।
1: प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली,
2: फोन नम्बर 091-560-220 र मोबाइल नम्बर 98-584-23-220 र 98-678-80-911।
0: के तपाईलाई थाहा छ,
3: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
3: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
0: के छ त विकल्प?
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
3: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर कैलाली।
4: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाट जोड़नी सेवा, टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग टीकापुर कैलाली, फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।
5: शरीरमा लाल वा फुस्तर छुअबेर ठहानी बिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुञ्जिना दाग देख पर्लसी हात गुरा झमझम गर्ना तथा मास सुहाक बठिना हुइलसे कुष्ठ रोग हुइसेक्ठा।
6: कुष्ठ रोग महिला व पुरुष जेहेफे लागसेक्ठा। कुष्ठ रोगको शंका लग्दिकी लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल आइएनएफ नेपाल बाँके जानकी 3 मानपुरमा सम्पर्क गरी
5: महिला उग्र अस्पतालसम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्नो घर पुरुष उग्र मद्दत गरी।
6: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माण का लाग साइनिंग अस्पताल आईएनएफ नेपाल बांके से जनहित में जारी संदेश।
0: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज संघीय संसदकी दुनू सदनकै संयुक्त बैठकमा सम्बोधन कर्नबाट सोमबार अपरान्ह 4 बजे शुरू हुलक संसदकै संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेल नेपाल सरकारकी आगामी आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नरही। बैठककै प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह राष्ट्रपति पौडेल सरकारकी नीति तथा कार्यक्रमकै सम्बोधनकै प्रति हस्तान्तरण गर्नरही। उक्त सम्बोधन मन्त्री परिषदकी आज बैठक पारित गर्नरही। संघीय संसदकी संयुक्त बैठकमा सरकारकी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति सम्बोधन कलबाट संसद सचिवालयकी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति केला अपरान्ह 4 बजे संयुक्त बैठकके सूचना सदस्य हुकन इन्स्या घनै देशकल रही। सचिवालय सक्कु सदस्य हुकन दिनके 3:45 बजे नै बैठक कक्षमा प्रवेश गर सिक्न सूचित गर्ल रही। संसदकी अधिवेशन प्रारम्भकी दिन सरकारकी नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ल रही। सचिवालय तय कलत कार्यतालिका अनुसार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम के ऊपर वैशाख 30 गते छलफल हुनेवा। ओहो दिन छलफल प्राप्त सम्बोधन हुकनके उपर टिप्पणी प्रधानमन्त्री के जवाफ पारित गर्न कार्यसूची रहल सचिवालय जनेलबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा राशिकी नतिजा सार्वजनिक गर्न तयारी कलबाट परीक्षा बोर्ड स्रोतकी अनुसार आज सन्ध्याक नै सार्वजनिक गर्न तयारी बा सम्भवत आज सन्ध्याकै सार्वजनिक हुना अब प्राविधिक कामुटी रहल बा परीक्षा बोर्डकी एक अधिकारी फेर सन्ध्याकै 5 बजे पाछ बोर्ड बैठक बोलिलोबाट बैठकमा सहभागी हुक्ला परीक्षा बोर्ड सदस्य हुकन बोला शुक्लबाट परीक्षा बोर्डकी सदस्य सचिव जंग बहादुर अर्याल नतिजा सार्वजनिक बारे छलफल हुटिरहल बोटिलोबाट एएससी परीक्षा गत चैत 19 गते से 29 गते सम्म सञ्चालन हुन्छ। एचओ परीक्षा केन्द्रमा नै उत्तर पुस्तिका परीक्षण कलक हालि नतिजा सार्वजनिक गर्न लगलबाट यही वर्ष एएससी परीक्षामा 5,12,421 जना विद्यार्थी फारम भर्ल रहे। निमितर्फ 4,41,566 जना ओ ग्रेट विधितर्फ 70,855 जना परीक्षा के लाख फारम भर्ला रहे। उमह 2,57,613 छात्रा 2,54,801 छात्र ओ अन्य करके 7 जना रहलबाट। खोज खबरमा फेरि विश्राम सम्पाछ फेरि विश्वन्तिर विशाल मुदायक रेडियो टिका एफएम।
7: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
8: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो नि करत का कहना हो का
7: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा क टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो न कबू कहूँ र घूम जाए तो था पाए।
9: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के

0: जुनसुकै बाटोको लागि बनेकै र सबैको लागि भनेकै होन्डा एसपी 125 बेस्ट राइड लोएस्ट मेन्टेनेन्स कस्ट बेस्ट एक्सचेन्ज भ्याल्यु बेस्ट माइलेज पावरफुल पर्फर्मेन्स मात्र रु 2,99,900
1: नयाँ वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक व्यापारी शुभ चिन्तक दादू भैया दीदी बहिनी हुक्रन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तर प्रगति के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
2: हमारे यहाँ थारू पहिरन के लहंगा चोलिया धोती सिलाई कना के संगे रेडीमेड भी उपलब्ध करा जाए और कुर्ता सुरुवाल फैशन डिजाइन के कपड़ा सिलेना और सिलाई कटाई के तालीम फे करा जाए एक तो सेवा करना मौका जरूर देवी।
1: अभी फैशन बुटीक सामुदायिक पुस्तकालय भवन टीकापुर कैलाली संचालक प्रतीक्षा चौधरी फोन नंबर 98-68-77-08-25।
3: शैक्षिक सत्र 2083 का लागि हिमालय मावि घियामा भर्ना खुल्यो। नयाँ वर्ष 2083 सालको सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित शैक्षिक सत्र 2083 का लागि हिमालय मावि घियामा कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खोलेकाले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई समयमै भर्ना गर्न हुन सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। हिमालय मावि घियाका विशेषताहरू शान्त वातावरण सृजनात्मक तथा दक्ष शिक्षकहरूद्वारा पठन पाठन गराइने कम्प्युटर ल्याब तथा विज्ञान ल्याबको व्यवस्था भएको प्रधानाध्यापक हिमालय मावि घिया कैलाली

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस्त रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239161
2: कर्णाली माध्यमिक विद्यालय टीकापुरमा कक्षा 9 सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना
3: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित कर्णाली माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि कक्षा 9 सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ तपसिल
2: प्रवेश परीक्षा फारम वितरण हुने मिति 2083 साल वैशाख 21 गते सम्म सीट संख्या 48 जना मात्र फारम उपलब्ध हुने समय बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म आवश्यक कागजातहरू कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र फोटो 2 प्रति
3: प्रवेश परीक्षाको मिति टीकापुर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा संघको समन्वयमा तय गरी जानकारी गराइनेछ
2: कर्णाली माध्यमिक विद्यालय टीकापुर एक कैलाली प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्मा सम्पर्क फोन नम्बर 9858241667 र 091551411
4: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित सन्त निरंकारी आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
5: गुणस्तरीय शिक्षा अनुशासन र नैतिक मूल्यका साथ उज्जवल भविष्य निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता।
6: हाम्रा विशेषताहरू
5: दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा पठन पाठन गराइने
4: शान्त र अनुशासित शैक्षिक वातावरण भएको
6: आधुनिक शिक्षण विधिको व्यवस्था भएको
5: अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड दिने
4: विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण प्रणालीको सुविधा भएको
6: कक्षा सञ्चालन हुने मिति 2083 वैशाख 15 गतेदेखि
5: आफ्नो बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि आजै भर्ना गर्नुहोस्। गुणस्तरीय शिक्षा नै सफलताको आधार
4: सन्त निरंकारी आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली प्रधानाध्यापक भरत कुमार तिरुवा सम्पर्क फोन नम्बर 091560059 र 9845570267।

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आज महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खेनास लगता कहाँ दिना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खेनास मन लागल बा। चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत। चलो जाए मई फैन संगे जिन
1: चलो टा चलो
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बो सेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनवा रोड जनकल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9806410186 थारू रेस्टुरेंट मुनवा रोड टीकापुर कैलाली। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स आफ्नो ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक आफन्त इष्टमित्र साथी भाइहरूमा नयाँ वर्ष 2083 को मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। साथै हाम्रो यहाँ ई रिक्सा अटोका पाठ पूर्जा पाइनुका साथै ई रिक्सा बिक्री पनि गरिन्छ। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स सशस्त्र प्रहरी गढ नजिकै टीकापुर कैलाली
2: संचालक चन्द्र प्रकाश रेग्मी र रविन्द्र हमाल सम्पर्क नम्बर 9854447244 र 9854422।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध करी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा फिर वस्त बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुही।
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिकला झोला है मरमत फेकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक, व्यापारी, शुभचिन्तक, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा, देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण ग्राहकहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
4: हाम्रो यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका आधुनिक डिजाइनका जेन्ट्स कपडा, सर्ट, प्यान्ट, तयारी कोट प्यान्ट पाउनुका साथै सम्पूर्ण जेन्ट्स आइटमहरू सिलाइन्छ। सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
3: न्यूज यूपी ट्रेड सेन्टर, टिकापुर एक, बलभद्र चोक, संचालक गोपाल परियार, मोबाइल नम्बर 98-48-42-40-36।
4: हजार तिरासी सालको नयाँ वर्षको ग्राहक महानुभाव, शुभचिन्तक र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: साथै हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा बच्चादेखि वृद्धसम्म र लेडिजदेखि जेन्ट्ससम्मका रेडिमेडका कपडा उपलब्ध गराइन्छ, जसमा सानो बच्चाहरूका लागि फ्रक, भेस्ट, प्यान्ट, वृद्धाहरूका लागि भेस्ट, हाफ प्यान्ट, लेडिजहरूका लागि रेडिमेड कुर्ता, सुरुवाल, टी शर्ट, प्यान्ट र जेन्ट्सका लागि सर्ट, प्यान्ट, भेस्ट, टोपी, हाफ प्यान्ट पाउनुका साथै स्कूल ब्याग, ल्यापटप ब्याग र विवाहका लागि सुटकेस पाइन्छ।
4: न्यू पपुलर फ्यान्सी स्टोर, टिकापुर कैलाली, संचालक वासुदेव पौडेल, सम्पर्क नम्बर 98584-88148।
3: नयाँ वर्ष 2083 सालको हामी हाम्रा समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हाम्रो यहाँ धेरै डिजाइनका झोलाहरू उपलब्ध गराइन्छ, जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न किसिमका ब्यागहरू अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रिएका झोलाहरूलाई मरमत पनि गरिन्छ। रतगैया झोला उद्योग, रोड, टिकापुर कैलाली, संचालक राम प्रसाद चौधरी, सम्पर्क नम्बर 98484-22373।

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सक्कू ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आत्महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ दिना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खेना मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत चलो जाए मैफन संगे जीन
1: चलो तो चलो
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बो सेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनक कल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9806410186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स आफ्नो ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक आफन्त इष्टमित्र साथी भाइहरूमा नयाँ वर्ष 2083 को मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। साथै हाम्रो यहाँ ई रिक्सा अटोका पाठ पूर्जा पाइनुका साथै ई रिक्सा बिक्री पनि गरिन्छ। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स सशस्त्र प्रहरी गढ नजिकै टीकापुर कैलाली
2: संचालक चन्द्र प्रकाश रेग्मी र रविन्द्र हमाल सम्पर्क नम्बर 9854447244 र 9854422233।
0: न्यू आछाम ट्रेडर्स नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभाव तथा देश विदेशमा रहनुभएका इष्टमित्र नातेदार लगायतका शुभचिन्तकहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हाम्रो यहाँ जेन्स सुट प्यान्ट कोट नेपाली दौरा सुरुवाल सफारी सुट आधुनिक डिजाइन अनुसारका सिलाइनुका साथै स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका रेडीमेड सर्ट प्यान्ट दौरा सुरुवाल कोट पोसाकहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। न्यू अछाम ट्रेड सेन्टर बलभद्र चौक टीकापुर कैलाली संचालक मीन बहादुर थनाल सम्पर्क नम्बर 9844333475। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक तथा देश विदेशमा रहनुभएका इष्टमित्र आफन्तजनहरूमा सुख शान्ति एवं समृद्धिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हाम्रो यहाँ आधुनिक किसिमका दराज पलङ अफिस टेबल डाइनिङ टेबल सोफा सेटको साथै अर्डर अनुसारको फर्निचर उपलब्ध गराइन्छ र घरको इन्टेरियर डिजाइन गरिनुको साथै वाल दराज किचन दराज रेलिङ बेडहरू घरमै गएर बनाउने सुविधा रहेको छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। न्यू गणेश बाबा फर्निचर उद्योग संचालक प्रवेश चौधरी सम्पर्क नम्बर 9868656478 टीकापुर कैलाली ब्लक नम्बर 14।
3: टीकापुर नगरपालिकाको अनाधिकृत रूपमा रहेको संरचना हटाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना।

0: नयाँ वर्ष 2083 सालके पावन अवसरमे सबको ग्राहक व्यापारी शुभचिन्तक दादु भैया दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: हमारे यहाँ थारू पहिरन के लहंगा चोलिया धोती सिलाई करना के संगे रेडीमेड भी उपलब्ध करा जाए और कुर्ता सुरुवाल फैशन डिजाइन के कपड़ा सिलेना और सिलाई कटाई के तालीम भी करा जाए। एक तो सेवा करना मौका जरूर देवी।
0: अभी फैशन बुटीक सामुदायिक पुस्तकालय भवन टीकापुर कैलाली संचालक प्रतीक्षा चौधरी फोन नंबर 98 68 77 08 25।
2: नववर्ष 2083 सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने मूल नाराका साथ

0: ली खोया पुग्नु तपदस्पत दरम्याना रसरस अंगमा ल्यान पुगसे हिँडरह
1: एक गति ना हाम्रो सहयोग कैखल डेन्टी बाटी देन मोटरसाइकल घुमाको धर्ने करिना
0: बैठा बैठा रम्याना रसरस मोरपा छ बैठाई को एकजना ब्रह्म्याना पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोश हुइसेक नापिला कोर्से पाछ से पकड़ का बैठा पर्थका
2: ब्रह्म्याना अगर हुन कैकमै

0: पकड़ के बैठा टू सुनील जी। अपना जैसी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुईल कारण सर्पदंशक ब्रेमेन उपचार केंद्र लेना सजिलो हुईल बा।
1: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था कतना छवटा मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो झट्ट पाजिला से ब्रह्मन चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो हुईना मेर का सुचा कर लगभग एंटी भेनम हुईला के उपचार केन्द्र में ले जाये पड़ता।
2: अपना हुआ जैने करी ना मई द्वान बता सके ला दे
1: वहाँ न कटलक सपक फोटो खींचला बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो हुईला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा।
0: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाई नहीं तो ढील हुई जी।
3: सफर डस डाल कर से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली। बिरमे आन अपना वो मोटरसाइकिल चालक के बीच में सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगत एंटीभेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में लै जाडारी। सप्प कटल से मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी।
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाख आधिकारिक www.snakebitenepal.org में शेर दिठा।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली